धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव नमः पार्वती पते हर हर महादेव गंगा मैया की विश्वनाथ की माता अन्नपूर्णा की उदीयमान सूर्य की समस्त देवी देवताओं की समस्त संत महात्मा ऋषियों की हर हर महादेव।

आपके सामने हमारे भारत का संविधान गंगा का एक रत्न है, अंधेरी रत्न गंगा भावी व्यक्ति गंगा भावी व्यक्ति निर्मल बने गंगा खबर था समा भारत को हमारे देश पतित पावन भूमि का पूर्ण सभी के शुचिता अवतारण माता संसार कार्य प्रकार संपन्न माता अवतारण माता जीवन को आधार जीवन को आधार जीवन को आधार गंगा भवन गंगा